मीठ न मिंगाल चंपा हिम्याका अशुरु कुरिन्वाला मारका नो हिमाविन के नो फदलानी मसिया कोना वाले खांगवे हेमुठो अंगवे हेम तुसी सालो ना मेरो